सुनने वालों, एक मजे की बात सुनिए। एक रोमांटिक पिक्चर देखकर मैं घर आ रहा था। रास्ते में आरडी बर्मन का एक गाना गा रहा था कि अचानक वो मिल गई।

0: राधे कृष्णा
1: मिट जाएगी तेरी तृष्णा भूल जा तू राधे कृष्णा बन जाऊं मर गया
0: राधे श्याम।